0: IET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबका बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जो हमें मिला है ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया जी से।
2: लिखते हैं, जिंदगी की कठिन परिस्थितियाँ भी एक वॉशिंग मशीन की तरह होती हैं, जो हमें खूब घुमाती हैं, निचोड़ती भी हैं, परंतु जब हम इनसे बाहर आते हैं तो हमारा व्यक्तित्व पहले से अधिक स्वच्छ, बेहतर और चमकदार हो जाता है।
0: इस मजेदार और अर्थपूर्ण सुविचार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे लिखते हैं, कार्यक्रम उमंग के सभी कार्यकर्ताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है ओम प्रकाश दशोरा, मीनाक्षी दशोरा, स्वच्छंद दशोरा और रचना दशोरा जी का। वो लिखते हैं,
0: श्रीमान जी, आपका ये प्रोग्राम बहुत शिक्षाप्रद और रोचक और साथ ही साथ प्रेरणादायक है।
2: ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे और अंजनी अंगारे जी ने पिछले सप्ताह के कार्यक्रमों की प्रतिक्रिया में इंटरनेट पर कुछ पंक्तियां भेजी हैं। लिखते हैं,
0: अपनों से जीवंत संवाद करो, सुनो, दिल से बोलो, जरा हंसो, गाओ, परिवार के संग हृदय पट खोलो जरा। जीवन उल्लास रिश्तों की मिठास है तेरे आसपास ही। इंटरनेट के मोहपाश से बाहर तो निकलो जरा।
2: धन्यवाद आप सबका एक बार फिर से आपके संदेशों के लिए और स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में।
0: श्रोताओं, कल हमने बात की थी जापान की एक अनूठी सुंदर परंपरा की।
2: श्रोताओं, आज एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं जापान की ही एक प्यारी सी घटना। ये प्रेरक तो है ही, साथ ही साथ ये संदेश भी देती है कि जिस राष्ट्र में विद्या का सम्मान होता है वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है।
0: जी हाँ श्रोताओं, तभी तो जापान को दुनिया के सबसे अधिक उन्नत, शिक्षित और तकनीकी रूप से संपन्न राष्ट्र के रूप में माना जाता है।
2: जी
0: तो चलिए करते हैं कहानी की शुरुआत।
2: श्रोताओं, आज हम आपको जापान की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें मानवता और शिक्षा के प्रति सम्मान का बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है।
0: जी, ये कहानी है जापान के होकाइडो क्षेत्र की एक स्कूली छात्रा की। उसका नाम था काना हराडा।
2: अजीत जी, मैंने इस कहानी के बारे में सुना है कि जापान में एक रेलवे स्टेशन केवल एक स्कूल जाने वाली लड़की के लिए चलाया जाता रहा, क्या ये सच है?
0: विमलेश जी, कहानी कुछ इस तरह ही सुनाई जाती है। इंटरनेट पर कहानियां इसी प्रकार से वायरल होती हैं। लेकिन ये कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा कि जापान रेलवे ने केवल एक लड़की के लिए पूरी ट्रेन चलवाई थी। आज उमंग कार्यक्रम में हम इसकी पड़ताल करेंगे। सच्चाई ये है कि काना हराडा उस छोटे स्टेशन की नियमित छात्रा यात्री थी, लेकिन ट्रेन में दूसरे यात्री भी सफर करते थे।
2: अच्छा, तो ये बात है।
0: जी हाँ, ये बात है बिल्कुल। स्टेशन का नाम था क्यूशिराताकी। ये जापान के उत्तरी द्वीप होकाइडो का एक दूर दराज इलाका है। धीरे धीरे वहाँ यात्रियों की संख्या कम होती जा रही थी, क्योंकि लोग रोजगार के लिए टोक्यो और ओसाका जैसे शहरों का रुख कर रहे थे। कभी कभी तो तीन चार यात्री ही हुआ करते थे।
2: तो रेलवे ने स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया।
0: रेलवे ने यात्रियों की संख्या और कम उपयोग होने वाले कई स्टेशनों को बंद करने की योजना बनाई, लेकिन प्रबंधन ने एक बात नोट की। वो ये बात थी, उस स्टेशन से एक स्कूली लड़की काना हराडा नियमित रूप से स्कूल जाती थी।
2: श्रोताओं, आइए कल्पना करते हैं, चारों तरफ बर्फ, ठंडी हवाएं और एक छोटी सी बच्ची अपने स्कूल बैग के साथ स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही है, और वो भी रोज, है ना अजीत जी?
0: जी विमलेश जी, यही तो काना हराडा की कहानी का सबसे भावात्मक दृश्य है। सुबह का समय है, काना हराडा अपने घर से निकलती है, स्टेशन पहुंचती है और ट्रेन का इंतजार करती है। शायद कुछ ऐसा कहती होगी,
2: ठंड बहुत है लेकिन मुझे स्कूल जाना है, मुझे पढ़ना है।
0: और फिर ट्रेन आती है।
2: जी, ट्रेन रुकती है, काना हराडा उसमें बैठती है और स्कूल चली जाती है।
0: फिर क्या हुआ विमलेश जी?
2: रेलवे ने ट्रेन और स्टेशन बंद करने का निर्णय ले लिया था, लेकिन काना हराडा की पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए ट्रेन और स्टेशन की सेवा उसके स्कूल जाने के समय तक जारी रही।
0: विमलेश जी, जरा सोचिए, आज जब हम किसी छोटे से गांव में स्कूल, सड़क या बस की बात करते हैं तो अक्सर सवाल पूछा जाता है, कितने लोग इसका इस्तेमाल करेंगे?
2: सही कहा जी जी, लेकिन शिक्षा के मामले में केवल संख्या नहीं देखी जानी चाहिए। कभी कभी एक बच्चे के लिए बनाया गया रास्ता उसके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है।
0: वाह, बहुत सुंदर बात। विमलेश जी, मुझे लगता है कि एक बच्ची या बच्चा मात्र संख्या नहीं है,
2: जी,
0: वे एक भविष्य है। तो श्रोताओं, फिर आखिर वो दिन आया जबकि काना हराडा ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर ली।
2: जी, और फिर मार्च 2016 में क्यूशिराताकी स्टेशन की सेवा समाप्त कर दी गई।
0: विमलेश जी, प्रश्न उठता है कि इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं या श्रोताओं को उमंग कार्यक्रम की ओर से क्या संदेश दे सकते हैं?
2: अजीत जी, वो संदेश है, बच्चे की शिक्षा को रास्ता दीजिए।
0: जी हाँ मित्रों, ना जाने

0: हमारे आसपास कितने बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें थोड़ी सी सहायता, थोड़ी सी संवेदना और बस एक अवसर चाहिए।
1: हो सकता है किसी बच्चे के पास किताब नहीं हो, किसी के पास स्कूल जाने का साधन न हो और किसी को परिवार का सहयोग न मिल रहा हो।
0: और यदि हम उसके रास्ते की एक छोटी सी बाधा भी दूर कर दें,
1: तो शायद हम केवल उसकी आज की समस्या नहीं, उसके पूरे भविष्य को बदल सकते हैं।
0: जी बिल्कुल, जी हाँ श्रोताओ, एक बच्चे के लिए बनाया गया रास्ता
1: आने वाली पीढ़ियों का रास्ता बन सकता है।
0: तो ये थी हमारी आज की कहानी और प्रस्तुत है आज का प्रश्न। प्रश्न है, जापान के उस रेलवे स्टेशन का नाम क्या था जहाँ से काना हराडा अपने स्कूल जाने के लिए ट्रेन लेती थी, और उस स्टेशन को कब बंद कर दिया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: जापान के उस रेलवे स्टेशन का क्या नाम है जहाँ से काना हराडा अपने स्कूल जाती थी और उसे कब बंद कर दिया गया?
0: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, सुनते हैं कार्यक्रम माला की चांदी की पायल।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक प्यारी सी बच्ची माला के बारे में बताया गया है कि चांदी की पायल पहनकर किस तरह वो मनोविनोद करती है और लुका छिपी के खेल से सबका मनोरंजन भी करती है।
0: माला की चांदी की पायल।
2: माला बिल्ली को डराती है। वो अपनी नानी को डराती है।
3: अरे माला तू।
2: वो अपने छोटे भाई को डराती। वो डाकिये को डराती।
4: बहन जी, डाकिया।
2: उसकी टोपी भी हवा में उछल गई। एक दिन माला की माँ ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी।
5: माला, यह तुम्हारे लिए है।
2: माला ने जल्दी से डिब्बी खोली, जिसमें उसे मिली नीले कागज में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। उन्हें पहनकर वो पूरे घर में घूमने लगी। छोटे छोटे घुंघरू झनकते। अब माला जहां भी जाती सब जानते। उसकी आवाज से बिल्ली को पता लग गया कि माला आ रही है। माला की हुश से पहले बिल्ली कूद गई। माला की हेज से पहले नानी पलट गई। इस बार वो डरी नहीं, क्योंकि उन्हें माला के आने का पायल की आवाज से पहले ही पता चल गया था। माला की थप्प से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया। माला की भौ से पहले डाकिया निकल गया। माला की छिक छिक छम की पायल की आवाज सुनकर डाकिये को पहले ही पता चल गया कि माला आ रही है। अब माला किसी को डरा नहीं पाती। तो ऐसे में माला ने क्या किया? उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी। वो बहुत खुश है।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम माला की चांदी की पायल।
1: जी मैं रमेश पिछले 20 साल से ट्रक चला रहा। रात को सफर लंबा होता है और रास्ते अंधेरे। उस रात मैंने गाड़ी एक ढाबे के पास खड़ी की थी और रिफ्लेक्टर के ऊपर मिट्टी जमी हुई थी, तो मैंने सोचा कल सुबह साफ कर दूंगा। मुझे बात छोटी सी लगी, सिर्फ 1 मिनट लगता है साफ करने में। उस रात किसी की जान भी तो जा सकती थी।

0: रात में सड़क किनारे खड़े वाहन पर साफ और सही रिफ्लेक्टर होना आवश्यक है ताकि वो दूर से स्पष्ट रूप से दिखाई दे।
1: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम रेडियो की कहानी।
2: इस कार्यक्रम में रेडियो के आविष्कार से लेकर उसके उद्भव और विकास की जानकारी एक सुंदर रेडियो नाटक के द्वारा दी गई है।
3: दोस्तों, मैं शरद हूँ।
4: और मैं सुचित्रा हूँ।
3: आज हम आपको रेडियो के इतिहास के बारे में बता रहे हैं और ये भी बताएंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है।
4: जी हाँ, रेडियो यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों से काम करने वाला संचार यंत्र। इसे लोग पहले जादुई डिब्बा भी कहते थे।
3: इस रोचक और प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत होती है 1865 में ब्रिटेन से। जेम्स कॉक मैक्सवेल नाम के स्कॉटिश वैज्ञानिक ने एक प्रकार की ऊर्जा के बारे में अपना एक गणितीय सिद्धांत सबके सामने प्रस्तुत किया। इस ऊर्जा का उन्होंने नाम दिया विद्युत चुंबकीय तरंग। उनका यह सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित था कि ऊर्जा हवा में प्रवाहित की जा सकती है, बेशक वो दिखाई ना पड़े।
4: परंतु मिस्टर मैक्सवेल अपने इस सिद्धांत को प्रमाणित नहीं कर सके। दूसरे वैज्ञानिक भी शायद इसे प्रमाणित नहीं कर पाते अगर 1887 में जर्मन वैज्ञानिक हेनरिच हर्ट्ज का प्रयोग सामने ना आया होता। इस प्रयोग का वास्तविक उपयोग तब हुआ जब गुग्लियेमो मार्कोनी द्वारा तरंग उत्पन्न करने वाले उपकरण में सुधार किया गया।
3: गुग्लियेमो मार्कोनी का जन्म 25 अप्रैल 1874 को इटली के बोलोगना शहर में हुआ था। उच्च श्रृंखल प्रवृत्ति वाले इस विद्यार्थी को स्कूली पाठों में किसी भी प्रकार की दिलचस्पी न थी, पर वो दूसरे आविष्कारकों के सिद्धांतों को आधार बनाकर नित नए नए प्रयोगों में व्यस्त रहता था। पिता को मार्कोनी की ये गतिविधियां बिल्कुल न भाती थी। एक दिन की बात है,
5: मैं तो इस बच्चे से तंग आ गया हूं, ना पढ़ना ना लिखना, खेल खेल खेल, क्या करेगा ये?
6: नहीं नहीं, वो सिर्फ खेलता नहीं है। क्या आपने ध्यान दिया है, कई बार उसके प्रयोग बड़े रोचक होते हैं।
5: सिर्फ प्रयोग करने से क्या वो अपने पांव पर खड़ा हो सकता है बिना पढ़ाई के?
6: सुनिए, मेरी भी यही चिंता है।
5: ना जाने क्या होगा इसका।
6: भौतिकी और विद्युत विज्ञान में उसकी बड़ी रुचि है, इसी बात पर वो अक्सर प्रयोग करता रहता है। उसके चचेरे भाई बहन तो उसके प्रयोगों से बड़े प्रभावित हैं।
5: अरे वो सब तो ठीक है, पर
6: न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है जी कि आगे चलकर मार्कोनी एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा।
4: एक सफल जीवन की खोज में मार्कोनी औपचारिक शिक्षा तो न ले पाए, पर सफलता पा लेने की दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा उन्होंने रेडियो जैसा नायाब आविष्कार इस जगत के सामने प्रस्तुत किया। ये 1893 की बात है। गुग्लियेमो मार्कोनी जब मात्र 20 वर्ष का था, तब उसने पहली बार बिना तार के विद्युत चुंबकीय तरंगों को 3 किलोमीटर की दूरी तक भेजने

0: में सफलता प्राप्त की और ये प्रयोग उसने किसी बड़ी प्रयोगशाला में नहीं अपने घर पर ही किया।
1: ऐसे ऐसे
2: जोर से मारना।
1: सैम है ना, अरे इधर तू आओ। हाँ हाँ आते हैं।
3: सैम है ना, क्या तुम लोग तैयार हो?
2: हम तो तैयार है मार्कोनी, पर ये तो बताओ तुम करने क्या जा रहे हो?
3: आज मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ एक अद्भुत प्रयोग।
1: कैसा प्रयोग?
3: आवाजों को बिना तार के हवा में एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने का प्रयोग।
2: बिना तार के? भला ये कैसे संभव है?
3: संभव तो है भाई, संभव है। अच्छा देखो, मैं अपना ये उपकरण चालू करता हूँ। इसे कहते हैं ट्रांसमीटर।
2: अच्छा
3: अच्छा, अब तुम जल्दी से भागकर घर पहुँच जाओ।
1: अच्छा।
3: वहाँ किचन के पास वाले कमरे में मैंने रिसीवर लगा रखा है। उसी के साथ एक घंटी भी लगा रखी है। सिग्नल पहुंचते ही घंटी बज उठेगी।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, हम जाते हैं, हम जाते हैं।
3: फिर जाओ ना। पहुंच गए?
1: हाँ हाँ।
3: ठीक है, अब मैं रेडियो सिग्नल भेज रहा हूँ।
1: हाँ हाँ भेजो, जल्दी भेजो।
2: अरे वाह, क्या बात
1: है! क्या क्या बात है!
2: अरे ये तो जादू की तरह लगता है। वाह क्या बात है! अरे वाह,
3: सिग्नल मिला?
2: हाँ हाँ, ये तो बड़ा दिलचस्प है, अद्भुत। शाबाश मार्कोनी, बधाई हो, बधाई।
0: और उस दिन मार्कोनी ने पहले एक कमरे से दूसरे कमरे तक, फिर घर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, और फिर घर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बागीचे तक बिना तार इस्तेमाल किए विद्युत चुंबकीय तरंगों को भेजा।
4: सन 1897 में मार्कोनी ने वायरलेस टेलीग्राफ और सिग्नल कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी ने एक साल बाद सन 1898 में इंग्लैंड के चेम्सफोर्ड में संसार की पहली रेडियो फैक्ट्री खोली।
0: फिर वर्ष 1900 में ट्यून्ड टेलीग्राफी के लिए प्रसिद्ध 7777 पेटेंट नंबर मार्कोनी ने लिया और उन्होंने इस उपकरण का प्रयोग पहला वायरलेस संकेत कनाडा और इंग्लैंड के बीच अटलांटिक महासागर के पार यानी के 3220 किलोमीटर की दूरी तक भेजने में किया।

0: इस प्रकार ये प्रयास इससे पहले के प्रयोग से 100 गुना अधिक दूरी तय कर सका। इससे ये सिद्ध हो गया कि रेडियो तरंगों पर पृथ्वी की वक्र आकृति का प्रभाव नहीं पड़ता। ये प्रयोग एक मील का पत्थर साबित हुआ।
1: ये संदेश भेजे गए इंग्लैंड और कनाडा के बीच मार्कोनी के रेडियो द्वारा, जिसमें मोर्स कोड का इस्तेमाल किया गया था। ये कोड सैमुअल मोर्स की देन है, जो मार्कोनी की ही तरह कल्पनाशील व्यक्ति थे।
0: बात 24 दिसंबर सन 1906 की है। अमरीकी तट के नजदीक अटलांटिक महासागर में जहाजों पर रेडियो ऑपरेटर

0: आज बड़ी कड़ाके की ठंड है।
1: हाँ डेविड, ठंड तो है ही, और फिर समुद्री यात्रा ना जाने कब पहुंचेंगे।
0: मैं भी यही सोच रहा हूँ रॉबर्ट, घर में होते तो मजा आ जाता, कल क्रिसमस भी तो है ना।
1: काश इस वक्त हम अपने परिवार के साथ होते।
0: लेकिन ये मौसम भी तो साथ नहीं दे रहा, ये बर्फीली आंधियां और ऊपर से घने बादल।
1: कप्तान ने कहा था कि कल हम बंदरगाह में होंगे, लेकिन अभी तक हमें जहाज को आगे बढ़ाने का सिग्नल नहीं मिला है, शायद मौसम की वजह से।
0: रॉबर्ट, रेडियो सिग्नल को लगातार सुनते रहो, शायद आगे बढ़ने का सिग्नल मिल जाए।
1: देखता हूं।
0: सुन सुन, ऐसा करो रॉबर्ट, दूसरी फ्रीक्वेंसी पर देखो।
1: अरे ये क्या, ये मुझे क्या सुनाई पड़ रहा है।

0: अरे रॉबर्ट, रॉबर्ट, ये तो क्रिसमस कैरोल है।
1: अद्भुत, अति सुंदर।
2: For God so loved his world that he sent his only begotten son. I wish you a merry Christmas.
0: अरे वाह, अरे वाह, वाह! रेडियो पर आदमी की आवाज, अद्भुत, सचमुच अद्भुत।
1: वाह, क्या बात है, वाह!
0: रॉबर्ट, पहली बार सुना है ऐसा।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: वाह,
3: ये आवाज कनाडा के रेगिनाल्ड फेसेंडन की थी। ये पहला अवसर था जब रेडियो पर मानवीय आवाज सुनाई पड़ी, और इस तरह मानवता को मिला क्रिसमस की पूर्व संध्या पर विज्ञान का एक अनमोल उपहार। इसमें सिर्फ कुछ वाक्य, एक गीत और वायलिन का संगीत था।
4: बहुत जल्दी ही लोगों ने मार्कोनी की कंपनी द्वारा बनाए गए इस उपकरण के माध्यम से लंबी लंबी दूरियों के पार भी संदेश भेजना और ग्रहण करना शुरू कर दिया।
3: मार्कोनी के इस आविष्कार से पहले जहाज यात्रियों के लिए बंदरगाह पर पहुंचने से पहले किसी भी प्रकार का संदेश संचार संभव न था।
4: सन 1912 अप्रैल रविवार का दिन था। टाइटैनिक विश्व का सबसे बड़ा यात्री जहाज एक भीषण हादसे में बर्फ की शिला से टकराकर डूब गया।
3: इन दावों के बावजूद कि यह जहाज डूब नहीं सकता,
0: ये क्या हो रहा है? लगता है जहाज किसी चीज से, शायद बर्फ की शिला से टकराया है।
5: अरे भागो भागो, बाहर निकलो, भागो, डैम की ओर भागो।
6: क्या हो गया?
7: अरे ये क्या हो रहा है? जहाज पूरी तरह हिल रहा है।
6: शांत हो जाइए, शांत हो जाइए।
8: ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? जहाज पूरी तरह हिल रहा है।
9: हेडपोर्ट कितनी बड़ी खबर पड़ती है। अरे बचाओ, अरे पानी भर।
0: जहाज की स्पीड कम करो, ऑपरेट द बैक प्रोपेलर, जहाज को पीछे करो, एंड कॉल द रेडियो ऑपरेटर चेक एंड हरे।
10: यस यस कैप्टन स्मिथ, यस।
0: ऑपरेटर जैक, इमरजेंसी मैसेज भेजो, सेव टाइटैनिक, शिप लोकेशन 40 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ। आई रिपीट, 40 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ। और हेल्प लाइफ सिग्नल भेजो, सेंड जनरल कॉल डिस्ट्रेस।
10: जल्दी जल्दी करो,
0: जीवन रक्षक नावों को नीचे उतारो, लाइफ बोट उतारो, लाइफ बोट को नीचे उतारो।
11: Gentlemen, it has been a privilege playing with you tonight.
3: क्या आपको पता है

0: टाइटैनिक के कप्तान स्मिथ ने मार्कोनी कंपनी को मॉर्स कोड पर क्या संदेश भेजा था? संदेश था,
1: सेव अस टाइटैनिक सिंकिंग, हेल्प हेल्प,
0: जो मार्कोनी के रेडियो पर इस प्रकार सुनाई पड़ा था।

0: जैक फिलिप्स और हेरल्ड को मार्कोनी टेलीग्राफ कंपनी ने टाइटैनिक जहाज पर संदेश भेजने और लेने के लिए नियुक्त किया था। कैसी विडंबना है, जैक फिलिप्स, जिसकी उम्र 28 साल थी, टाइटैनिक जहाज के साथ ही डूब गया, और हेरल्ड ब्राइट, जिसकी उम्र 22 साल थी, बच गया।
1: बाद में इस हादसे में बचे एक यात्री ने भी ये बताया कि रेडियो ऑपरेटर ने मार्कोनी कंपनी और नजदीक के जहाजों को मदद के लिए किस प्रकार टेलीग्राफिक संदेश को भेजा। इस बात का पूरा पूरा श्रेय रेडियो को ही जाता है।
0: 1909 में मार्कोनी और फर्डिनेंड ब्रायन दोनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला, पर मार्कोनी द्वारा नोबेल पुरस्कार लेने की बात ही कुछ और है। स्वयं उनके अनुसार वे ना कोई वैज्ञानिक थे और ना ही कोई आविष्कारक, पर वे बहुत ही विलक्षण थे।
2: Congratulations, Mr. Marconi. You are really wonderful. And so is your amazing invention. Congratulations to you.
3: धन्यवाद ऐसे नायाब आविष्कार के लिए।
4: आपने तो कमाल ही कर दिया। कितना अद्भुत है आपका रेडियो। वाह वाह वाह वाह वाह।
5: सच में कमाल है। बिना तार का ये काम करने वाला रेडियो। विश्वास नहीं होता। विश्वास नहीं होता।
3: मिस्टर मार्कोनी
6: जी,
3: अच्छा ये बताइए,
6: ये आविष्कार करने के बाद आपको कैसा लग रहा है? जी मैं बहुत अच्छा और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ।
3: गुड गुड।
6: सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा से मैं एक ऐसा उपकरण तैयार कर सका हूँ जो पूरे विश्व में मेल मिलाप की भावना विकसित कर पाएगा।
7: बिल्कुल।

नमस्कार, पेश है फिल्म रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम की प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर ने आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों नेताओं ने संयुक्त वक्तव्य जारी किया। भारत और बेल्जियम ने रक्षा, साइबर क्राइम, डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग पर कई ज्ञापन समझौते किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रांकन के बीच शिष्टमंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने भविष्य की परियोजनाओं के लिए आपसी सहयोग करने पर बल दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापारिक सम्मेलन निवेशकों के समक्ष भारत की सुधार आधारित विकास की चर्चा की। कहा, वैश्विक व्यवधानों के बावजूद भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। भारत और फ्रांस ने वस्त्र और फैशन क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य वैश्विक बाजारों में भारतीय वस्त्रों और

0: कौशल को बढ़ावा देना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स SIAM की 66वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नवाचार, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा कीमतों के बल पर भारत विश्व की नंबर एक ऑटोमोबाइल उद्योग बनने की क्षमता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह IOS-5 का कल प्रक्षेपण करेगा। यह उपग्रह GSLV-F17 रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। प्रधानमंत्री और वाराणसी से सांसद नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। मौसम विभाग ने अगले दो दिन दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की। लद्दाख में 4 और 5 सितंबर को मद्रास महोत्सव आयोजित किया जाएगा। और खेलों में कादिंबी श्रीकांत ने चीन मास्टर्स सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। महिला एशिया कप 2020 में आज दुबई में भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। तो ये थे FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। बने रहिए हमारे साथ हमारे अगले कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स के लिए।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: नंदन वंदन अभिनंदन संदेश टू सोल्जर्स की आज के इस अंक में मैं गीतिका उनियाल आप सभी का स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। हर बार की तरह हमारा आज का ये कार्यक्रम आत्मिक होने वाला है, क्यों कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं ऐसे ही एक मेहमान जिन्होंने 40 वर्षों तक सेनाओं के जरिए सेना में अपनी सर्विसेज देने के बाद आज सेवानिवृत्त होने पर भी अपना कार्य करना नहीं छोड़ा, अपनी कर्तव्य निष्ठा अपने कर्म से उन्होंने अपने लिए एक नए आयाम ढूंढे हैं। उनके नए आयाम क्या हैं ये बाद में बात करेंगे, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मेजर जनरल अशोक कुमार। अति विशिष्ट सेवा मेडल से इन्हें सम्मानित किया गया है और ये एक्स डायरेक्टर जनरल वर्क्स इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैं। आज हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज एक ऐसे ऑफिसर हमारे साथ हैं जिन्होंने हमारी सेना को सशक्त किया है। अक्सर हम यही कहते हैं कि सेना का अर्थ है हमारे तमाम वो फौजी जो मैदान जंग में जाकर लड़ते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हमारे ये फौजी सेना को सशक्त करते हैं, अपने साथियों को सशक्त करते हैं? अब आप पूछेंगे कैसे, वो ऐसे कि हमारे आज के जो गेस्ट है, मेहमान है, ये एक सोल्जर होने के साथ साथ एक मिलिट्री इंजीनियर भी है और इन्होंने सेना में रहते हुए असीम योगदान दिए हैं। तो आइए सर्वप्रथम सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान मेजर जनरल अशोक कुमार जी का। अशोक जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी।
0: जी, जब भी हमारे इस कार्यक्रम में आप जैसी हस्तियां शिरकत करती हैं, पहुंचती हैं, तो सबसे पहला सवाल मेरी ओर से यही रहता है कि वो कौन सी कैसी बात थी, कौन सी कैसी चाह थी जो आपको भारतीय सेनाओं की तरफ ले गई।

0: क्या वो बात थी जिसने आपको आकर्षित किया कि अगर जाना है तो बस सेना में ही जाना है और सेना के माध्यम से ही अपने देश प्रेम को स्थापित करना है?
1: गीतिका, वो दौर ऐसा था जब हमारे पास विकल्प कुछ थे भी और कुछ नहीं भी थे, पर सब में जो परम विकल्प था वो फौज ज्वाइन करना था। और वह इसलिए भी था कि हमारे पिताजी स्वयं फौज में थे, वो इंडियन नेवी में थे, और उनके साथ में हम कई वर्षों तक रहे। अलग अलग जगहों पर हमने गए और दिल में एक ऐसी उम्मीद थी कि हम भी उनके पद्म चिन्हों पर चलेंगे और फौज में जाने की कोशिश करेंगे, जो कि कामयाब हुआ।
0: वाह क्या बात है। अक्सर ये देखा जाता है जब वो बच्चे जिनकी परवरिश फौजी माहौल में होती है तो एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में जिंदगी जीते हैं, तो क्या वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था जो बचपन से ही आपको रास आया?
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हमारे पिताजी हमें बचपन से ही उन्होंने जो सिखलाई करी, वो चाहते थे कि जैसा वो अपने नियमित रूप में करते हैं वैसा ही हम सब करें। हमने कोशिश की कि हम उनके पदचिन्हों पर चल पड़ें और उनके जैसे काफी चीजें सीखें। कुछ हमने सीखा, कुछ आज भी हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं।
0: वाह क्या बात है। तो सीखने सिखाने का सिलसिला बरकरार है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन ये भी जानना चाहते हैं आपसे कि भले ही घर में माहौल स्ट्रिक्ट रहा हो तो इसके बीच शैतानियां ना हुई हो ऐसा भी मुमकिन नहीं?
1: स्ट्रिक्ट माहौल, आई थिंक उन दिनों में जो तरीके थे काम करने के वो इस तरह के थे कि जब तक बच्चे को एक एक खुराक ना मिल जाती तो वो
0: जी
1: आगे नहीं बढ़ते थे। लेकिन आज का ज़माना शायद बदल चुका है, लेकिन हम उन चीज़ों से यूज टू हो चुके थे और हम अपने तरीके से, हम अपने दोस्तों के साथ में शैतानियाँ भी करते थे, खेलकूद भी करते थे, पढ़ाई भी करते थे और अपने काम में कोशिश की कि हम वो अचीव कर पाएं जो हम चाहते थे। और फौज का जो हमारा एक लक्ष्य था वो हमने उन सब चीज़ों में रहते हुए हासिल किया।
0: जी, ऐसा भी दौर आता होगा कि पिताजी लंबे समय तक कहीं बाहर रहते हों, टूर्स पे रहते हों, अपने मिशन्स पर रहते हों, तो उस बीच उनके साथ संपर्क ना हो पाता हो, तो ऐसे में किसको अपनी बात कहते और कैसे घर का सामंजस्य माताजी बनाती?
1: ये सब चीज़ें आई थिंक फौज में जब आप रहते हैं, आपके पिताजी, आपके पेरेंट्स, सो आप इन सब चीज़ों से वाकिफ हो जाते हैं और आफ्टर सम टाइम जिंदगी का एक रूप जो है वो अपने आप में एक तरीके से ढलने लग जाता है। जब आपको मालूम होता है कि आपके पिताजी जब आपके साथ में नहीं हैं तो आपने क्या क्या कार्य करने हैं, मदर के साथ में कैसे डील करना है, अपने जो सिबलिंग्स हैं उनके साथ में कैसे करना है और अपनी पढ़ाई का ध्यान कैसे रखना है। उन दिनों में मोबाइल्स नहीं होते थे, कम्युनिकेशन के जरिए चिट्ठियों के द्वारा हुए थे, तो उनका एक अलग खुशी थी उसमें, एक अलग तरीका था और हमें मालूम होता था कि कब पिताजी आएंगे और कब हमारी खिंचाई होगी। लेकिन साथ ही साथ हम अपना काम करते रहते थे और वो सारी जिम्मेवारियां भी निभाते थे जो आज कम देखने को मिलती हैं।
0: एक बच्चे के लिए उसके पिता उसके रोल मॉडल होते हैं, तो जब कभी आपने अपने पिता को यूनिफॉर्म में देखा उस वक्त क्या फीलिंग आई, उस वक्त क्या सोचा आपने?
1: सो यूनिफॉर्म में तो जब से हम पैदा हुए और हमारी हम एक उस स्टेज में आए जब, तो हमने अपने पिताजी को हमेशा यूनिफॉर्म में देखा और अच्छा लगता था। वो यूनिफॉर्म सफ़ेद रंग की होती थी और वो नेवी में कार्यरत थे, सो काफ़ी अच्छी अच्छी जगहों पर उन्होंने पोस्टिंग करी, तो हमारा भी इरादा था कि हम भी फौज में जाएं। हम चाहते थे कि हम एयरफोर्स में जा पाएं, लेकिन हम फाइनली आर्मी में गए और आज हमें कोई शक नहीं है कि जो भी हमने आर्मी से सीखा वो काबिले तारीफ है और हमारे जीवन की जो कार्यशैली है वो उससे हमने बहुत कुछ सीख कर आज हम एक सशक्त इंसान बने हैं। इसका मैं धन्यवाद अपने पेरेंट्स को, अपने पिताजी को, अपनी माँ को, जो आज हमारे बीच में नहीं है, पिताजी हैं, तो उन सबको देता हूँ जिनकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं।
0: जी निश्चित रूप से। वो पल कौन सा पल था, कैसा पल था और कब घटित हुआ जब आपने आर्मी का एग्जाम क्लियर किया? क्या थी वो पूरी प्रक्रिया जिसके तहत आप एक ऑफिसर बने इंडियन आर्मी में?
1: उन दिनों में जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते थे और अमूमन फौजी बच्चे ज़्यादातर ऐसे ही स्कूलों में पढ़ते थे और उनका काफ़ी नाम हुआ करता था और काफ़ी अच्छी पढ़ाई हुआ करती थी। तो हमारी ये जिद्दोजहद थी कि हम पहला हमारा जो लक्ष्य होगा वो फौज का होगा। सो पहला जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो उन दिनों में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, जिसको हम एनडीए कहते हैं, उसके एग्ज़ाम हुआ करते थे। वो उन दिनों में 11वीं के बाद होते थे और मुझे याद है कि हम ग्रुप बना के सारे दोस्त एक

0: साथ पढ़ा लिखा करते थे और कोशिश करते थे कि हम उसको निकल पाएं। और सबसे अच्छी बात यह रही कि हमने अपना जो इम्तिहान था वो पहली दफा में क्लियर कर लिया था, लेकिन एनडीए के दौरान में कुछ ऐसे इश्यूज आए कि हम ज्वाइन नहीं कर पाए। वो कसक जो है दिल में लगी रही और ये रहा कि हमें फौज में ही जाना है। तो हमने 3 साल और मशक्कत की, ग्रेजुएशन की, बम्बई यूनिवर्सिटी से बीएससी में उत्तीर्ण हुए और फिर दोबारा से हमने उसी सेंटर में उसी उम्मीद के साथ फिर एक बार जूझे और फिर पहली दफा में हमने एग्जाम क्लियर किया। और एयरफोर्स में जाने की ख्वाहिश तो थी, लेकिन कुछ मेडिकल रीजंस की वजह से हम आर्मी में आ गए।
1: जी
0: सो एंड आई हैव नो रिग्रेट्स, मुझे कोई ऐसी शिकायत या गिला नहीं है, लेकिन जो सफर रहा बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत लोगों से मुलाकात हुई, हमने जिंदगी के कई दायरे कई पहलू ऐसे सीखे जो आज तक हमारे साथ हैं और उम्मीद है कि हम अपने बच्चों में भी ये चीजें डालने की कोशिश करते हैं।

0: सफर रहा बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत लोगों से मुलाकात हुई, हमने जिंदगी के कई दायरे कई पहलू ऐसे सीखे जो आज तक हमारे साथ हैं, और उम्मीद है कि हम अपने बच्चों में भी ये चीजें डालने की कोशिश करते हैं।
1: जी, तो सन 1986 में आपने अपना एग्जाम क्वालिफाई किया,
0: हाँ
1: सीडीएस
0: जी
1: एग्जाम,
0: जी
1: और
0: हाँ
1: फिर 1987 में आप कमीशन्ड हुए इंडियन आर्मी में।
0: हाँ जी
1: जी, तो फिर पहली पोस्टिंग कहाँ मिली, कौन सी रेजिमेंट ज्वाइन किया आपने?
0: जब हमने ट्रेनिंग के दौरान IMS से निकले तो कुछ दिनों के लिए हम रुड़की में एक छोटा ट्रेनिंग कैप्सूल होता है जिसको करने के बाद में हमारी पहली पोस्टिंग सिक्किम में आई, जो कि आपने सुना होगा नथुला पोस्ट है जो चाइना के अक्रॉस है। सो हमारी यूनिट की एक टुकड़ी वहां पर तैनात थी, और हम जैसे ही यूनिट पहुंचे कुछ दिन कैलिमपोंग एक जगह है जहां पर रहने के बाद में तकरीबन 15-20 दिन के बाद हमको वहां भेज दिया गया, और ऑलमोस्ट 2 साल हम वहां पर रहे, और जो कुछ वो सीखने को मिला उस दौरान में वो काफी काबिले तारीफ था। हमने अपने अपने आप भी काफी कुछ सीखा, लेकिन जो हमारे सरदार साहिबान और हमारे जवान और हमारे जो अफसरान थे उनके जरिए हमने काफी कुछ सीख ली जो आज तक हमारे साथ में बरकरार है।
1: वाह, क्या बात है। एक बात और जानना चाहती हूँ आपसे, वैसे तो भारतीय जो सेना है, जो ट्रेनिंग्स आपको दी जाती है, टफेस्ट ट्रेनिंग्स कहा जाता है वर्ल्ड में, लेकिन ट्रेनिंग्स के बाद भी जब आप एक ऑफिसर बन जाते हैं, आपकी जिम्मेदारियां आपको दी जाती हैं, आप पर कार्यभार दिया जाता है, आपको डिसीजंस लेने होते हैं, कमांड सुनने पड़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है, तो वो मंजर कैसा था? क्या आपकी कल्पनाओं से एकदम अलग था, या जो आप सोच के गए थे बिल्कुल वैसा था?
0: आपका जो सोचने का तरीका होता है वो आपकी एक अपनी यू नो तरतीब होती है कि आप सोचते हैं कि जिंदगी की यू नो चीजें इस तरह से चलेंगी, लेकिन जब आप जमीन पर हकीकत में देखते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं होती हैं, कई चीजें उसके विपरीत भी होती हैं, और आप देखते हैं कि जिंदगी के मायने कुछ और भी हैं। और उसमें जो सीखने सिखाने वाले लोग हैं, आपके जो सीनियर अफसरान हैं वो तो है ही हैं, लेकिन जो आपकी टुकड़ी के जवान हैं, जो JCOs हैं, जो तजुर्बेकार हैं, उनके जरिए आप बहुत कुछ ऐसा सीखते हैं जो शायद आपको अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में प्रैक्टिकली शायद नहीं सिखाया जाता है। वो जब आप जमीनी हकीकत के साथ जुड़ते हैं तो आप वो एक अलग ही सीख होती है, और वो आपके साथ जिंदगी भर बरकरार रहती है। तो उसके लिए मैं अपने जवानों का और अपने जो सरदार थे उनका काफी शुक्रगुजार हूँ, और उनके साथ में मैं आज भी कॉन्टैक्ट में रहते हैं, जब भी हमें मौका मिलता है हम उनसे मिलते हैं।
1: जी, यही खास बात है हमारी भारतीय सेना की, कि वो हर मंजर के लिए हमेशा तैयार रहती है, और अपने सैनिकों को, सिपाहियों को, ऑफिसर्स को इसी तरह से तैयार करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हालात कैसे भी क्यों ना हो, तुम्हें डटे रहना है, टिके रहना है, और हर जंग में फतह हासिल करनी है।
2: कांधे पे सूरज

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका ओनियाल और आज हमारे साथ हैं मेजर जनरल अशोक कुमार। हम कहते हैं ये कि हम में वो जज्बा है, हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, हम हर जंग में फतेह हासिल कर सकते हैं, पर सच मानिए ये जज्बा भी हमें हमारे सिपाहियों, हमारे सोल्जर्स, हमारी भारतीय सेना से मिलता है और जिसकी जीती जागती मिसाल आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है मेजर जनरल अशोक कुमार जी। अशोक जी, आपसे ये जानना चाहती हूँ मैं कि जब हम सर्विसेज ज्वाइन करते हैं, खासतौर पर जब आपने सर्विसेज ज्वाइन की, उससे पहले ट्रेनिंग थी और ट्रेनिंग के बाद आपको एक ऑफिसर नियुक्त किया गया, आपको पोस्टिंग दी गई, लेकिन इंजीनियरिंग, क्योंकि मिलिट्री इंजीनियर आप रहे हैं, तो इंजीनियरिंग ही इस विभाग को ही आपने चुना या फोर्सेज ने आपके लिए इस विभाग को चुना, किस तरह थी ये प्रक्रिया?
1: सो ट्रेनिंग के दौरान आपकी क्वालिफिकेशन को मद्देनजर रखते हुए आपको मौका दिया जाता है कि आप किस संस्था में, या इन्फेंट्री में, आर्टिलरी में, या इंजीनियर्स में जाना चाहते हैं। तो उनकी क्वालिफिकेशंस होती हैं। अगर आप साइंस ग्रेजुएट हैं तो आप जो तकनीकी ब्रांचेस हैं जिसमें इंजीनियर्स, ईएमई, सिग्नल्स आते हैं, इनमें आप जा सकते हैं। बकायदा कि आपने बीएससी बैकग्राउंड किया हो और आपके पास वो डिग्री हासिल हो। सो हमारे पास में विकल्प था कि हम इंजीनियर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। उन दिनों में इसमें काफ़ी कंपटीशन था, लोग काफ़ी जाना चाहते थे। तो हमारे कोर्स के दौरान हमारे 28 वैकेंसियां थी और हम तकरीबन 200 लोग थे जिन्होंने इंजीनियर्स में ऑप्ट किया था। तो आपकी मेहनत के अलावा आपकी किस्मत भी थी, वो बैचेस में बनाते थे और हर बैच में 2 से 3 वैकेंसीज आती थी। सो आई वॉज लकी कि हमें जो मुझे ज़रूरत चाहिए था वो मिला एंड खुशी का माहौल था जब आपने कोर ऑफ इंजीनियर्स में ज्वाइन किया। ये एक ऐसा कोर है जिसमें आप लड़ाई के दौरान में सबसे पहले दुश्मन लड़ाई में जाते हैं और लड़ाई ख़त्म होने के बाद में सबसे आखिर में आप पूरा कार्य करके बाहर निकलते हैं। सो दिस इज एन एडवांटेज एंड इसमें आपको पढ़ाई लिखाई काफ़ी करनी पड़ती है, जो कि एक आम धारणा है कि फौज में जब बंदा जाता है तो इतनी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। बट एज इंजीनियर्स हमें ज़रूरत है कि हम इंजीनियरिंग डिग्री हासिल करें और अगर आपकी चेष्टा है तो आप आगे उसको फर्दर एग्जाम दे के आप अपने मास्टर्स भी कर सकते हैं, जो कि मैंने अपने कार्यकाल के दौरान किया। सो कहना कि फौज में जाने के बाद पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई काफ़ी है और आपके ऊपर भी निर्भर करता है कि आप कितना करना चाहते हैं, बिकॉज इनका उपयोग लड़ाई के दौरान भी आता है
0: जी। पढ़ाई का सिलसिला तो मुझे लगता है आपका बरकरार रहा, जैसे आपने खुद कहा आपने बीटेक किया सिविल इंजीनियरिंग में, उसके बाद एमटेक भी किया, एमफिल किया आपने मैनेजमेंट स्टडीज।
1: जी हाँ।

0: ये सिलसिला जो था, ये सिलसिला फौज में रहते रहते बरकरार रहा?
1: ये सिलसिला फौज में रहते रहते बरकरार रहा। कई फौज आपको अपॉर्चुनिटीज देती है, कई सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसमें आपने जिद्दोजहद करके और अपने आप को उत्तीर्ण हासिल करना होता है। सबको मौका जरूर मिलता है लेकिन हर कोई नहीं कर पाता है। तो आई वॉज वन ऑफ दोज लकी वंस हु कुड मैनेज टू डू दीज कोर्सेज एंड पढ़ाई भी कर पाए, और जिससे हमारे को अच्छी ख्याति हासिल हुई और हमारे प्रमोशंस में भी इसके काफी काम आए।
0: बहुत खूब। अब बात की जाए मिलिट्री इंजीनियर की, मिलिट्री इंजीनियरिंग की। अक्सर हम यही सोचते हैं कि फौज का अर्थ है हमारे वो सेनानी, हमारे वीर, हमारे सैनिक जो मैदानी जंग में जाते हैं, जंग लड़ते हैं और हमें कहीं ना कहीं सुरक्षित करते हैं। लेकिन जब भारतीय फौज की बात आती है और जब हम बात करते हैं मिलिट्री इंजीनियर्स की, तो इंजीनियर्स हमारी सेनाओं को कैसे सशक्त करता है? क्या भूमिका रहती है इंजीनियर्स, मिलिट्री इंजीनियर्स की?
1: आज का दौर आपने देखा होगा, जब प्रेजेंट सिनेरियो में काफ़ी लड़ाइयाँ देश के बाहर में हो रही हैं और जिस हिसाब से चीज़ें बदल रही हैं, तो तकनीकी की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। इसी प्रकार हमारे फोर्सेस में भी इंजीनियरिंग का होना बहुत ही अहमियत रखता है। और कहते हैं कि कोर ऑफ इंजीनियर्स का मायने हैं कि जब आप लड़ाई के दौरान दुश्मन के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, आप अपने फोर्सेस को मोबिलिटी प्रदान करते हैं और दुश्मन को मोबिलिटी डिनाई करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपका जो अचीवेबल टारगेट है वो अचीव हो और दुश्मन को आपने टारगेट को अचीव करने में आप बाधा बने। सो आपने चाहे सुरंगें बिछानी हैं, चाहे आपने ब्रिजेस बनाने हैं, चाहे आपने नौका के जरिए नदी को पार करवाना है, उसमें बड़ा बड़ा जो असला है, सामान है, टैंक्स हैं, ये सब पार कराने और लाने और ले जाने की जिम्मेवारी कोर ऑफ इंजीनियर्स को दी जाती है। साथ ही साथ जब दुश्मन दूसरी तरफ से हमला करता है तो उसमें माइने या सुरंग लगाने का कार्य भी इंजीनियर्स को दिया जाता है, जो कि हम अपनी सूझबूझ और हमारे सिखलाई के तरीके से करते हैं। इसी प्रकार जब दुश्मन की जो मोर्चा है उसको हम हासिल कर लेते हैं तो वहाँ पर हम रिकूप करके दोबारा से उसको एस्टैब्लिश करते हैं और जो हमारी टुकड़ियाँ हैं पीछे उनको सामने लाके फिर लड़ाई को और आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा जब लड़ाई लगती है तो हम एयरफोर्स के साथ में भी मदद करते हैं, जब हमारे हवाई अड्डे होते हैं उनको बनाने में, या कोई नुकसान हो गया है उसको दोबारा से रिहैबिलिटेट करने का काम भी हमारा है। सिमिलरली नेवी के जहाज़ों के लिए जो युद्ध पोत वगैरह हैं उसमें जो चीज़ें बनती हैं या कोई चीज़ बिगड़ गई है उसको भी ठीक करने का, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार में लाने का और लड़ाई के लिए सशक्त बनाने का कार्य भी हम लोगों का होता है। सो काफ़ी काम होते हैं जो कि तभी हासिल हो सकते हैं जब आपने पीस दौरान में अच्छी पढ़ाई की हो, उसको अमल में लाए हो और देश के सुरक्षा कार्यों में उसकी आपने एक नीति बनाई है जिसके कारण हम वी अचीव व्हाट वी वांट टू अचीव।
0: जी, तो ना केवल भारतीय सेना को सशक्त करती है मिलिट्री इंजीनियर्स, बल्कि आम जनमानस के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत ही सार्थक साबित होती है। यू आर हेल्पफुल टू द एंटायर नेशन इन डिफरेंट वेज। तो किन किन तरीकों से हमारी मिलिट्री इंजीनियर्स जो है देश के लिए
1: जब
0: कार्य
1: कहीं
0: करते
1: देश
0: हैं?
1: पर आपदा आती है, कहीं बाढ़ आ गया, कहीं तूफान आ गया, कहीं लैंडस्लाइड्स आ गए, तो उसमें जब रेस्क्यू मिशंस होते हैं तो उसमें भी हमारे इंजीनियर्स का काफ़ी काम होता है। जब हमें दुर्गम इलाकों में हम जाते हैं, लोगों की जानें बचाते हैं, रेस्क्यू करते हैं, हॉस्पिटल्स में उनको लेके आते हैं और कोशिश करते हैं कि जो भी हम भारत की जनता के प्रति या बाहर के देशों में हम जो भी फैसिलिटीज़ पहुंचा सकें वो टाइम से दें, ताकि इंसान को इंसान की जो ज़रूरत महसूस होनी चाहिए उसमें हम एक भागीदार बन सकें।
0: जी, तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता होगा हमारे ऑफिसर्स के लिए कि वो निरंतर पढ़ते रहें, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं हम इंजीनियर्स की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा योगदान है इंजीनियर्स को इंजीनियर्स बनाने में। ऐसे में मिलिट्री इंजीनियर्स भी उनकी लगातार अपने सर्विसेज दौरान ट्रेनिंग चलती होंगी,
1: हाँ जी,
0: ट्रेनिंग्स का हिस्सा बनकर वो अपने आप को सशक्त करते हैं कहीं ना कहीं कि क्या कुछ नया चल रहा है, क्या कुछ नया किया जा सकता है। तो आपके साथ भी लगातार ट्रेनिंग्स का सिलसिला जारी रहा
1: ये
0: होगा?
1: सिलसिला हमेशा जारी रहता है, बिकॉज देश में इतने विकल्प हैं कि आप सोचते हैं कि आप ही कर रहे हैं। आपने लड़ाई है अपने एक दुश्मन से जीतनी है और वो भी अपने तरफ अपनी पढ़ाई लिखाई और अपनी तकनीक के द्वारा कोशिश में रहता है कि आपसे अच्छा आ सके। जब तक आप उसकी सोच को विफल नहीं कर पाएंगे, और वो होगा जब तकनीक में आप बकाया आप अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे और

0: उससे बेटर हासिल करेंगे तभी आप जंग को जीत पाएंगे। सो आने वाले समय का जो दौर है वो एक फिजिकल लड़ाई है और एक है जो तकनीक के द्वारा जीते वाली जाने वाली लड़ाई है। और हम देख रहे हैं कि आज बाहर के देशों में, चाहे वो ईरान की लड़ाई चल रही हो, चाहे यूक्रेन की लड़ाई हो, उसमें छोटे छोटे देश भी अपनी तकनीक को इस्तेमाल करते हुए कितनी बहादुरी से और दिमाग से लड़ने की कोशिश जारी है। तो वो शायद चीज़ें हमें भी हासिल करने की ज़रूरत है, हम इससे अलग नहीं रह सकते हैं।
1: जी, तो 100 बातों की एक बात कि एक सोल्जर को मानसिक शारीरिक रूप से सक्षम होना पड़ता
0: बिल्कुल
1: है
0: बिल्कुल
1: अगर उसे जीत हासिल करनी है, चाहे वो मैदान की जंग में हो या फिर हमारे सिविलियंस की जिंदगियों की बात क्यों ना हो। हमारे जो सिपाही हैं, हमारे जो सोल्जर्स ऑफिसर्स हैं, वो हमेशा मुस्तैद हैं हमारे लिए। एक बात और यहाँ पे आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आपने खुद बताया था कि आप एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन आप बहुत खुश हैं कि आपने इंडियन आर्मी के जरिए अपने देश के प्रति कर्तव्य निष्ठा को दिखाने का सौभाग्य प्राप्त किया। आपने ये भी कहा कि किस तरीके से मिलिट्री इंजीनियरिंग की जब बात होती है तो आप एयरफोर्स, नेवी, सबके लिए काम करते हैं। आपने भी ऐसा किया है, सभी
0: बिल्कुल
1: फोर्सेस के लिए आपने काम किया। उस वक्त खुशी तो बहुत हुई होगी। कहते हैं कि जीवन ना एक चक्र की तरह है, कभी कभी जहां छूटता है वहीं जिंदगी को ले आता है। तो
0: बिल्कुल
1: जब
0: आप सही कह रहे हैं, बिकॉज यू नो एक वेन यू आर यंग आप कोशिश करते हैं कि आप वहीं जाना चाहें जहां पर आपकी यू नो आप जाना चाहते हैं, लेकिन कई बार भगवान के तरीके अलग होते हैं। तो शायद वो यू नो मुझे पायलट बनाने से किसी तरह से वंचित किया, लेकिन मैंने अपने कार्यकाल के दौरान में एयरफोर्स के साथ, नेवी के साथ खूब जमकर काम किया और एक ऐसी फीलिंग आई कि हम उन्हीं का एक हिस्सा हैं। चाहे हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कोई कार्य हो या कहीं भी हो, तो एयरफोर्स की सुविधाएं हमें मिलती थी और अच्छा लगता था जब हम उनके जहाज़ों में बैठकर दूर दराज के क्षेत्रों में देखते थे कि भाई कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है इंजीनियरिंग की, जिससे उनको सहूलियत मिलेगी और हमारे जो देश के सिपाही हैं उनकी कार्यशैली में एक क्षमता बढ़ेगी जिससे जिसका हमें काफ़ी गर्व है। तो हमने काफ़ी अच्छे बड़े बड़े रनवे बनवाए, टैक्सी ट्रैक्स बनवाए, एयरपोर्ट्स हवाई जहाज की जो सुविधाएं हैं वो काफ़ी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बनाई, जिनकी वजह से आज हमारी सेनाएं वो सब हासिल कर पा रही हैं जिनकी हमें ज़रूरत है।
1: एक बात और, क्या मिलिट्री इंजीनियरिंग आपको दूरदर्शिता प्रदान करता है? क्योंकि कहते हैं कि जीवन में बहुत कुछ ऐसा घटित होता है जिसके बारे में किसी को भी पहले से नहीं पता होता है, लेकिन एक मिलिट्री पर्सन के लिए, एक इंजीनियर के लिए, खासतौर मिलिट्री इंजीनियर के लिए, क्योंकि वो सशक्त कर रहा है फोर्सेस को, उसके लिए अनफोर्सीन फैक्टर्स को ध्यान में रखकर कुछ नया इजाद करना कितना महत्वपूर्ण होता है।
0: बहुत दुरुस्त आपने सवाल किया और ये चीज़ें बहुत ही कारगर हासिल होती हैं जब आप अपनी इंजीनियरिंग के यू नो ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी चीज़ का एहतियात करते हैं जिससे हमारे पूरे फोर्सेस को एक अच्छा मौका मिलता है। और जो कि हमने अपने कार्यकाल के दौरान जो कभी हमने सोचे नहीं थे, हमें जब ऐसे टास्क मिले तो क्योंकि हमारे इंजीनियरिंग की नॉलेज और हमारे जो लोगों ने हमें सिखाया वो इतनी कामयाब हुई कि हमें खुद सोचकर अच्छा लगा कि हमने सही किया, जो चीज़ें हमने सीखी और हम अपने देश के काम आ सके।
1: जी, सबसे बड़ा जज्बा तो एक फौजी के लिए यही होता है कि वो अपने देश के लिए काम कर रहा है, अपनी कर्तव्य निष्ठा से, अपने देश प्रेम से, और शायद इस सुख से बड़ा सुख कुछ हो नहीं सकता कि आप देश के लिए काम कर रहे हैं। जीवन के 40 वर्ष आपने भारतीय सेना को दिए हैं, तो जब पीछे अतीत के पन्ने पलट कर देखते होंगे, बहुत सारी बातों को याद करते होंगे, तो कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना एक सुखद सांस, उसको आप रोज भरते होंगे और अपने कार्यकाल को जो आपने जिया है उसे जरूर याद करते होंगे।
0: नहीं, अच्छा लगता है बिकॉज जो आपकी बचपन की उम्मीदें थीं और आप अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, हर कोई कुछ ना कुछ करना
1: करना
0: चाहता
1: चाहता
0: है। ज़रूरी नहीं है कि वो फौज में हो या ना हो, हर इंसान, एक हर नागरिक इस देश का अपने देश के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहा है। लेकिन हमें एक सौभाग्य मिला कि हम काफ़ी नज़दीकी से अपने देश के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की, काफ़ी कुछ कर पाए। काफ़ी वर्क इन प्रोग्रेस है जो आने वाली जनरेशन से वो करेंगी, बट इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग। और इसमें सबसे बड़ा जो हमारी सिखलाई है, जो हमें बताया जाता है कि देश के लिए 3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, वो है नाम, नमक और निशान।
1: वाह, क्या बात
0: नाम
1: है।
0: है आपकी अपनी पलटन का, आपके अपने जिस यूनिट में आप काम करते हैं, रेजिमेंट हैं, और उसको आप कैसे ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। एक सैनिक यह सुनिश्चित करने के लिए लड़ता है कि उसके किसी भी कृत्य से उस गौरवशाली नाम पर कोई आंच ना आ जाए। फिर वो नमक की बात करता है, जब जहां पर वफादारी और कर्तव्य निष्ठा

0: व्यवस्था काम आती है, और जिस चीज जो नमक आप खाते हो उसका यह विश्वास का वह बंधन है जो सैनिक को वर्दी कमान और अपने साथियों से कभी विश्वासघात ना करने की प्रेरणा देता है। निशान हमारे झंडे की बात होती है, यहाँ राष्ट्रीय तिरंगे रेजिमेंट के अपने झंडे और उसके इंसिग्निया का प्रतिनिधित्व करता है। निशान को हमेशा ऊंचा रखना देश के लिए एक संप्रभुता और रेजिमेंट के युद्ध सम्मान जो जिसको हम बैटल ऑनर्स बोलते हैं कि रक्षा का एक संकल्प है जो कि हमारे रग रग में भर दिया जाता है, और यह एक ऐसी चीज है जो हमेशा आपके काम आती है चाहे वो पीस स्टेशन हो चाहे युद्ध का क्षेत्र हो। तो तीन चीजें हमेशा याद करें, नाम, नमक और निशान।
1: बहुत खूब, बहुत खूब। तो हम अपने श्रोताओं से ये कहना चाहेंगे कि अगर आप कोई संदेश भेजना चाहते हैं संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम में, तो आप हमें मैसेज भेज सकते हैं 9868107070 इस नंबर पर। और आज हमारे साथ हैं मेजर जनरल अशोक कुमार। अति विशिष्ट सेवा मेडल से आपको नवाजा गया है आपके योगदान के लिए, और जिस तरह से आपने 40 वर्षों तक अपना योगदान दिया, आपके लिए सुखद पल बहुत सारे आपने अर्जित किए और आप भावी पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं।

0: आप सभी का पुनः स्वागत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल, और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मेजर जनरल अशोक कुमार, AVSM यानी कि अति विशिष्ट सेवा मेडल से आप अलंकृत हैं। और आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज मेजर जनरल अशोक कुमार हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। मेजर जनरल अशोक कुमार, आपसे जानना चाहते हैं कि हम जीवन में कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो हमेशा चाहता है कि वो धीरे धीरे करके आगे बढ़े। आप भी सेना में रहते हुए अलग अलग पोजिशंस पर आगे बढ़ते गए, और कहते हैं कि जब आप ओहदे में आगे बढ़ते रहते हैं, आपको हाईएस्ट पोजीशंस मिलती हैं, तो उसके साथ जिम्मेदारियां भी बहुत सारी बढ़ जाती हैं। बहुत सारे आपने कार्य किए, लेकिन इन सब पोजीशंस में काम करने के साथ साथ कोई एक ऐसी चीज थी जो हमेशा एक जैसी रही और साथ चली 40 वर्षों, क्या वो एक ऐसी फीलिंग थी, क्या वो ऐसी बात थी जिसने आपका साथ कभी नहीं छोड़ा? भले ही ओहदा बढ़ता गया, जिम्मेदारी बढ़ती गई, लेकिन वो फीलिंग जब ज्वाइन किया था फोर्सेस तब भी वैसी थी, और जब फोर्सेस छोड़ी तो आज भी वो बात जिंदा है, आपके दिल में पेवस्ट है।
1: जब आप किसी भी महकमे में जाते हैं, करते हैं, तो सबसे बड़ा जो एहसास है वो, खासकर जो फौज का महकमा है, वो एक आपको ऐसी उम्मीद देता है कि ये आप इसी को बिलोंग करते हो और इसी में आप बसते हो, और वो जो चीज़ है वो आज भी ऐसा लगता है कि आप आज भी फौज में हैं। भले ही वर्दी नहीं पहनी है, लेकिन एक एक एक एहसास होता है कि मैं इसी में जिया हूँ और मैं इसी में मरना चाहता हूँ। दूसरा जो बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमें लगता है फौज से, एटलीस्ट मुझे सीखने को मिला है, कि आप जब से फौज में आते हैं और जाते हैं, हमेशा ये सीखने को मिला कि आप अपने जो जिनकी वजह से आप वहाँ तक पहुँचे हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो ओहदे के अधिकारी हैं, बट जो जवान हैं, जो सबसे नीचे वाला तबका है, जो आपकी तरफ देखता है कि ये हमारा साहब है, और बिना कुछ कहे आपस में हम एक दूसरे की बात को समझते हैं, वो एक ऐसी उम्मीद रखता है जिसमें आप बिना बताए, चाहे वो लड़ाई का मैदान हो चाहे अदरवाइज हो, आप उनकी उम्मीदों पे अगर खरे उतरेंगे तो आप वास्तविकता में आपने अपने जीवन को कुछ कर दिखाया है। और वो उम्मीद बिना बताए, बिना बोले हुए अगर आप कर पाते हैं और उसको साथ में लेकर चल सकते हैं, तो वो एक ऐसा अचीवमेंट है जो मुझे लगता है कि हमेशा आपके साथ में होना चाहिए। कई बारी आपके जवान आपके लिए इतना कुछ कर जाते हैं, लेकिन जब उनकी बारी आती है तो शायद आप उसे भूल ना पाएं, एक ऐसा कुछ उसकी उम्मीदों पे खरे उतरें, तो वो आपको जिंदगी भर याद करता है। और आज भी हमारे जो सैनिक हैं जो रिटायर हो गए, उनसे जब बातचीत होती है तो हम अपने पुराने दिनों को याद करते हैं और बताते हैं कि हमने उनसे क्या सीखा और उन्होंने हमें क्या सीख दी। एक छोटा सा उदाहरण था, जब मैं फौज में गया तो पहाड़ों के इलाके में थे, हमारे पास गाड़ियां थी, तो हमने गाड़ी चलानी अपने एक सिपाही से सीखी। उसने हमें कोशिश की कि जो ट्रेनिंग है वो दे पाए, और गाड़ी चलते समय पहाड़ के स्लोप पर रुक गई, तो उसका नाम मुझे याद है आज भी, सिपाही ओम प्रकाश हुआ करता था। और वो गाड़ी रुकने के बाद में वो बाहर निकला, और उन दिनों में हैंडल मार के गाड़ी को स्टार्ट करते थे, वो गाड़ी इतनी जोर से हैंडल लगा कि गाड़ी उछल के और नीचे रोल होनी शुरू हो गई। तो हमने एक नाले के साइड में गाड़ी उल्टी होके चारों पहिए ऊपर और गाड़ी पलट गई। तो ओम प्रकाश का पहला वाक्य था कि लेफ्टिनेंट साहब आप घबराइए ना, हम ये जिम्मा अपने सर पर लेंगे। हमने कहा ओम प्रकाश ऐसा नहीं होगा, गाड़ी हमारी वजह से गिरी है तो हम जिम्मेवार हैं, तुम बस ये करो कि वहां से जाके कोई हेल्प लेके आओ। तो वो हादसा एक ऐसा हादसा था जहां पर आपका सिपाही आपके लिए आपको आँच नहीं आने देता है और कोशिश करता है कि मेरा जो साहब है वो हमेशा सर्वोपरि रहे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें

0: आप सीखते हो कि यदि आपने ऐसे दौरान में आप उनके साथ में खड़े हो, जिंदगी भर उन चीजों को याद रखता है। और आज भी जब हम पुरानी चीजें बातें याद करते हैं तो बताते हैं कि साहब आपने हमारे लिए ऐसे किया था, भले ही वो कुछ अपना प्रमोशन नहीं मांगता है या अपने लिए कुछ ऐसी चीज नहीं मांगता है, लेकिन जो उसकी सच्चाई है और उसका जो काम करने का तरीका है, वो उसके साथ में आप जिंदगी कुछ ऐसे उसूल सीखते हैं जो आपके दिल को हमेशा छू जाते हैं। और आप समझते हैं कि एक सबसे बड़ा जो आदर है वो एक इंसान का इंसान के प्रति प्यार और उसकी एक ऐसी गरिमा है जिसको अगर आप बरकरार रखें तो वो जिंदगी भर आपके शायद काम आती है। भले ही उस मोमेंट में आप शायद कुछ मिस कर जाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सब चीजें आपको सोच के अच्छा लगता है। एंड उन्हीं उम्मीदों के साथ में हम जीते हैं, कोशिश करते हैं कि अपने आने वाली जनरेशन को भी ऐसा ही कुछ सिख पाएं।
1: जी पहुंच के खास बात मुझे ये लगी कि जब भी हम इस प्रोग्राम में संदिग्ध सोल्जर्स में आप जैसे ऑफिसर से बात करते हैं कि फौज में कोई अकेला नहीं है, हमेशा किसी हर किसी के साथ हर कोई है, ऐसा नहीं एक है, हर किसी के साथ हर कोई है। और ऐसे में जब आप अपने परिवार से दूर है तो आपको लगता है कि मेरा कौन सा ऐसा काम था जो मुझे पता नहीं लगा और वो हो भी गया, तो
0: बिल्कुल,
1: शायद एक
0: हाँ
1: बड़ी खूबसूरत बात
0: हाँ
1: है फौज
0: खूबसूरत
1: की।
0: चीज़ है। और आप जब आप आगे सरहद पर अकेले रहते हैं, अकेले मतलब आप अपने फैमिली से परिवार से दूर होते हैं, आपके जो जवान हैं वो आपको ऐसा एक माहौल क्रिएट करते हैं जब आपको महसूस नहीं होते, और ऐसा महसूस होता है कि आपके परिवार के लोग आपके साथ में बकाया हैं, वो आपका उतना ध्यान रखता है, शायद आपका परिवार भी उस मंजर में शायद इतना ध्यान ना रखे। और ये छोटी छोटी चीज़ें जब बिन बनकर आप एक साथ सोचते हैं तो वाकई एक परिवार का एहसास होता है। और एक फौज में जो सबसे अच्छी सिखलाई है कि आप लास्ट मैन, यू हैव टू टच ग्राउंड विद द लास्ट मैन ऑन ऑन ऑन द फील्ड, यू कांट लीव एनीवन बिहाइंड। लड़ाई के दौरान अगर कोई हादसा हो जाता है, आपका जवान क्षतिग्रस्त होता है, जब तक हम उसको निकाल कर सुरक्षित जगह पर नहीं लाते हैं, हम अपना कार्य का शैली को सफल नहीं समझते हैं। और कई हमारे ऐसे कोर्सेज और ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जहाँ हमने एक टुकड़ी के साथ में एक जीत हासिल करनी है, अगर उसमें आप समय से पहले आ गए लेकिन एक बंदा आपका अभी तक पीछे है, जब तक वो शामिल नहीं होगा आपकी जीत जीत नहीं मानी जाएगी। सो ये एक ऐसी मंजर है जिसको हम सीखते हैं। उसके अलावा जब कोई हमें कलेक्टिव टास्क मिलता है और हम में से कोई बंदा नहीं कर पाता है, तो उसको भी जब तक हम साथ में लेकर उस जीत को हासिल ना करें, वो जीत जीत नहीं मानी जाती है।
1: वाह क्या बात है, क्या बात है। तो ना केवल कृतज्ञता हम फौज से सीखते हैं, हम टीम स्पिरिट एकता भी हम फौज से ही सीखते हैं। और कहीं ना कहीं जब हमारे युवा ये कहते हैं कि हम फौज में जाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं जितने भी माता पिता हैं वो गर्व से उनका सीना पहले ही चौड़ा हो जाता है ये कहते हुए कि हमारा बच्चा फौज में जाना चाहता है। और यही फौज की खूबसूरत बात है कि वो सभी युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है और हर युवा यही चाहता है कि मैं देश के प्रति अपनी कृतज्ञता अपना प्रेम सेनाओं में भर्ती होकर दिखाऊं। तो ये जग आपके लिए है, सेनाएं आपके लिए हैं, अब आप उसे कैसे आत्मसात करते हैं, कैसे तैयारी करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है।

0: संदेश तो सोल्जर्स आज के इस कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है और आपको बताना चाहेंगे हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मेजर जनरल अशोक कुमार। एक सिपाही के लिए, एक सोल्जर के लिए, एक ऑफिसर के लिए, चाहे वो किसी भी पद पे क्यों ना हो, लेकिन जब उसके कार्य को, उसकी जिम्मेदारियों को, उसकी कर्तव्य निष्ठा को सम्मानित किया जाता है तो उसके लिए सबसे सुखद पल होता है। आपके लिए भी बहुत सुखद रहा होगा, ये भी कह सकते हैं कि आपने जिस चीज का इंतजार किया वो आपके आपके शोल्डर्स पर थी, आपकी ड्रेस पर थी, आपकी यूनिफॉर्म पर थी। अति विशिष्ट सेवा मेडल जिससे आपको नवाजा गया आपके सर्विसेज के लिए, आपके योगदान के लिए, तो उस वक्त वो जो पल होता है वो पल आपको क्या क्या याद दिलाता है? क्या आप अतीत में चले जाते हैं या सिर्फ याद करते हैं कि आज ये जो पल है ये पल इस वजह से आपको प्राप्त हुआ है क्योंकि आपने बस अपने कर्तव्यों का पालन करना सीखा था इसलिए हुआ।
1: इंसान की एक फितरत है कि वो जब भी कोई काम करता है तो वो एक अवार्ड और रिवॉर्ड सोचता है। कई बारी वो अवार्ड शायद उसे तब नहीं मिलता जब वो मोस्ट हम्बली उसको डिजर्व करता है। कई बारी अवार्ड जो हैं वो ऐसे वक्त पर मिलते हैं जब आपके अंतिम चरण में आप इतना कुछ काम करके गवर्नमेंट आपको रिकग्नाइज करती है तो एक अच्छी फीलिंग आती है। इंसान इस दुनिया में जीता है कुछ कारणों से जिनमें से वो उम्मीद करता है कि उसके काम किए गए कार्यों का एक एक उसको शाबाशी दी जाए। ज़रूरी नहीं है कि वो मिले लेकिन जब मिलती है तो एक अच्छा एहसास होता है और मोर देन आपके अपने लिए वो एक एहसास आपके बच्चे जो आपके साथ में आपको यहाँ तक पहुँचाने में जिनका गौरव रहा है, आपके पिताजी, आपके माता जो जिन्होंने आपको बड़े होते हुए देखा और उम्मीद करते हैं कि उनका उनके बेटे को कुछ ऐसा अवार्ड मिला जो राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है तो एक काफ़ी गौरव और गर्व की बात होती है। सो जैसे हम कहते हैं कि रिसीविंग द मेडल वॉज अ डीपली हम्बलिंग रिकॉग्निशन एंड ऑनर इज नेवर अ रेस्टिंग पॉइंट, इट इज़ अ रीअफर्मेशन ऑफ द ट्रस्ट दैट पीपल हैव इन यू। चाहे वो आपके जवान हों, चाहे आपके बच्चे हों, आपके माता पिता हों, आपके रिश्तेदार हों, सबको एक उम्मीद रहती है और इट सर्व्स एज अ रिमाइंडर ऑफ द डेडिकेटेड सोल्जर्स एंड द टीम्स हुज कलेक्टिव एफर्ट मेड दैट कॉन्ट्रीब्यूशन पॉसिबल। तो सभी का इसमें एक विश्वास था, एक

0: कोशिश थी कि सबने मिलकर आपको उस पैगाम तक पहुंचाया जिसका आप खुद जिम्मेवार तो थे, लेकिन आपके पीछे जो लोग थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया उनका मैं शुक्रगुजार हूं. एंड द अवार्ड रीइन्फोर्स्ड माय कमिटमेंट टू कंटिन्यूस ड्यूटी इंश्योरिंग दैट एवरी सब्सिक्वेंट डिसीजन प्लान एंड मेंटरशिप एफर्ट रिफ्लेक्टेड द स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड ऑफ द अवार्ड दैट आई गॉट. सो माय सिंसियर थैंक्स टू एवरीवन हु ओवर द इयर्स वाज देयर विद मी इन गेटिंग एंड अचीविंग व्हाट आई फाइनली अचीव्ड.
1: जी बहुत खूब बहुत खूब. ग्रेटिट्यूड इज द वे ऑफ लाइफ और जिंदगी जीने का सलीका इस बात से पता लगता है कि हम कितने कृतज्ञ हैं. और आपकी कृतज्ञता फोर्सेस की तरफ, अपने अवार्ड्स की तरफ और आपने जितने भी कार्य किए हैं आज तक उनकी तरफ आज इस शो के माध्यम से हमें सुनाई दी और कहीं ना कहीं हमें भी बहुत सारी प्रेरणा आपसे मिली. एक व्यक्ति जिसका जिक्र ना हमने अभी तक नहीं किया, या बेटर हाफ, शायद उनका आपके जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा होगा. क्योंकि कहते हैं कि एक ऑफिसर को ऑफिसर एक माता पिता बनाते हैं, उसके अंदर वो संस्कार उसमें जीवंत रखते हैं हमेशा, उनके साथ भी उनके बाद भी हमेशा रहते हैं. लेकिन स्पाउस उन्हीं संस्कारों को आगे लेकर चलती है. आपके पीछे बहुत बार उन्होंने घर को संभाला होगा, कंप्लेन भी नहीं की होगी. लेकिन इससे पहले ये मुझे बताइए कि आप उनसे मिले कैसे थे.
0: आपने एक अच्छा सवाल पूछा. Behind every successful man there is a woman, and undoubtedly it has been my wife whose name is Preeti. और जो good part है वो ये है कि हमारे जो दोनों के parents थे वो फौज में coastmates थे जो navy में साथ में आए, और हम बचपन से एक दूसरे को जानते थे. और भाग्यशाली रहे कि हम आपस में हमारी शादी हुई और हमने अपनी जिंदगी को एक अच्छे तरीके से जिया. और जो भी मैंने हासिल किया उसमें बहुत ज़्यादा हाथ मेरी बेटर हाफ प्रीति का था. एंड शी इज़ रियली वर्कड हार्ड फॉर वॉट एवर आई एम टूडे एंड माई चिल्ड्रन हु निहारिका एंड आर्यन हु बीन वंडरफुल एंड दे स्टूड लाइक रॉक बिहाइंड मी इन एवरी यू नो गुड और बैड पैटर्न्स ऑफ लाइफ. एंड इन द एंड इट वॉज एन अचीवमेंट विच आई कांट थैंक लेस टू दीज पीपल. And Preeti is now remains my biggest critic, but the kind of lessons that she's given me is something which is, you know, which I won't have done on my own. And main shukrgizar hoon ki mujhe bhagwan ne achhi bacche diye, achhi patni di, maa baap parents ne jo hausla diya jiski wajah se main yahan tak pahuncha. Aur ye apne aap mein ek achievement hai जो हर माँ बाप अपने बच्चे में देखता है, हर वाइफ हर हस्बैंड अपनी वाइफ में देखता है और अपने बच्चों को आँख में आँख मिलाकर उम्मीद करता है कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा और आज यहाँ तक पहुँच पाए.
1: बहुत खूब. और एक ग्रेटिट्यूड हमारी तरफ से तमाम लिसनर्स के लिए जिन्होंने हमें संदेश भेजे हैं और आपको सैल्यूट कर रहे हैं. पंकज अमरावती महाराष्ट्र से जय हिंद यहां पर लिखकर भेजा है. बीके दत्त कॉलोनी से शबनम ने. आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप जिस तरह से प्यार देते हैं हमारे फौजियों को काबिले तारीफ है. संदेश यहां पर भेजा है नुसरत अली ने और संदेश हमें हमारे पास मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से भी आया है जोया का. और ये आपके करेज को सलाम कर रही हैं, सलाम कर रहे हैं यहाँ पे आहिल अली बीकानेर से. बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त. यश शिंदे ने हमें संदेश भेजा है मुंबई से. और संदेश भेजने वालों में और भी बहुत सारे दोस्त हैं. ये हैं धारा शिव महाराष्ट्र से, यशवंत इनका नाम है. और दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद. मोहम्मद इद्रिस ने संदेश भेजा है और संदेश भेजने वाले बहुत से दोस्त हैं. कुछ दोस्त भी पूछ रहे हैं कि हम तैयारी कैसे करें, इसके लिए हम अलग सेशन आपके लिए जरूर आयोजित करेंगे. यहाँ पर मध्य प्रदेश से अजय का हमारे पास संदेश आया है. बहुत बहुत धन्यवाद. सभी दोस्तों का हम धन्यवाद देना चाहते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं मेजर जनरल अशोक कुमार जी का. मैं बस एक बात कहूंगी, वंस एन ऑफिसर इज ऑलवेज एन ऑफिसर, बट वंस अ मिलिट्री इंजीनियर इज ऑल्सो अ मिलिट्री इंजीनियर फॉर एवर. ये बात सच है ना?
0: बिल्कुल दुरुस्त है.
1: और इसीलिए इन्होंने काम करना बिल्कुल नहीं छोड़ा है और ये कहेंगे कि इनकी इंजीनियरिंग आज तक कायम है और आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब कहां कैसे इन्होंने आपके लिए आपका कोई सपना साकार कर दिया. अगर मन में ये बात आए तो समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं हमारे ये जो फौजी हैं फौज में रहकर भी और फौज के बाद भी आपके लिए हमेशा कार्यरत रहते हैं. अब ये एक नगमा एफएम रेनबो की तरफ से, हम एफएम रेनबो का क्रेडिट ले रहे हैं, हम प्रीति मैम को ये डेडिकेट कर रहे हैं आपकी तरफ से. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका एक बार फिर से.
0: थैंक यू सो मच. थैंक यू.